0: गल्ला गल्ला।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: जबरदस्त हिट्स,
9: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
10: फजा 97.1 FM,
11: आई लव इट।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
8: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
7: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
8: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
7: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
8: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
7: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
8: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
7: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
8: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
7: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
9: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: Ya फिर इंग्लिश और अरबिक तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
12: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
13: You are listening 97.1 FM.

0: So hot.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: Huzzah 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: जबरदस्त हिट्स,
8: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
9: फजा 97.1 FM,
8: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: Get ready to move.
1: It's all about the beats.
2: Wow, FM.
3: Only Tune Super Hit Channel.
4: Fizz on 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
7: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
6: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
7: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
6: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
7: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
6: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
7: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
6: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
7: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
6: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
8: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामिल

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਦੂਆਂ ਦਾ

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: It's commercial time.
3: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
5: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
5: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
7: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
7: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Faza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो हेलो हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीजी एंड एक्साइटिंग मॉर्निंग टू ऑल माय लिसनर्स हु आर लिसनिंग मी राइट नाउ। जी हाँ लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा। वेलकम करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द डीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम पे। जैसे कि लिसनर्स आप सभी जानते हैं कि रेडियो फजा 97.1 एफएम ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का बड़ा डोज। सो इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेके चलेंगे हम और आप अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मिलकर बनाए आपके आज के इस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार। कुछ सुनाएंगे आपको अपनी बातें, कुछ सुनेंगे आपकी बातें और जानेंगे आपके दिल का हाल। तो लिसनर्स शो में होंगी बहुत सारी गपशप, खट्टी मीठी चटपटी बातें, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा कि आपको करनी होगी पूरी पूरी पार्टिसिपेशन, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही अकेले इस शो को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेडियो फजा 97.1 कोशिश करता है कि अपने तमाम तर लिसनर्स की गुफ्तगू को सुना जाए, ना सिर्फ सुना जाए बल्कि उनकी तमाम तर रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाए। सो लिसनर्स, इसी इनिशिएटिव को लेकर मैं आप सभी की खिदमत में आज हाजिर हुई हूँ एक नए वीक के साथ, एक नए मंडे के साथ। आई नो बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि उफ द हैक्टिक मंडे, बट ट्रस्ट मी, हर संडे के बाद फिर मंडे तो आना ही होता है। सो जहाँ हम संडे को इतना एंजॉय करते हैं, अपनी जिंदगी के उन लम्हात को जीते हैं जहाँ हमें मौका मिलता है खुद के साथ बातें करने का, अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे प्यारे खूबसूरत लम्हात स्पेंड करने का, तो वहीं फिर ये मंडे भी तो कंपल्सरी है, क्योंकि छुट्टी के बिना, छुट्टी के बाद एक ऐसा दिन लाजमी आता है जहाँ आपको करना पड़ता है बहुत सारा काम। चलिए लिसनर्स, अगर अभी आपके दिमाग में चल रही है एक किस्म की हलचल कि अच्छा आज मंडे है, उफ अगेन, कहाँ से स्टार्ट किया जाए और आज के दिन को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, सो बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ ना, हम मिलकर करेंगे आज के इस खूबसूरत से दिन का आगाज। ना सिर्फ इस दिन का आगाज करेंगे बल्कि पूरी कोशिश यही रखेंगे कि आज का हमारा दिन बिल्कुल भी जाया ना जाए। और अगर दिमाग में आपके चल रही है कोई भी किसी किस्म की हलचल, सो उन तमाम तर टेंशन्स को, परेशानियों को, उलझनों को कर दे साइड पे, क्योंकि अगले 2 घंटे होने वाले हैं आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत प्यारे लम्हा। सो द लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 0115710097 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी ये है मेरा और आपका रابطे का नंबर। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपने दिल का हाल सुना सकते हैं। इसके साथ साथ आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, आप कौन सी उलझन का शिकार हैं, या जिंदगी में कोई भी हलचल चल रही है, तो वो सभी बातें जो आप किसी ना किसी से शेयर करना चाहते हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। सिंपली आपको क्या करना होगा, इस नंबर को जल्दी से सेव करना होगा। इस नंबर पर जाके आपको अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं अभी जाके फौरी तौर पर लिखकर भेज दें, मैं आपके तमाम तर मैसेजेस को शो में लाजमी शामिल करूंगी। और अगर आपकी कोई फेवरेट रिक्वेस्ट है, कोई खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक आप चाहते हैं जो आपका फेवरेट हो हम शो में शामिल करें, सो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा गाना है जो आप करना चाहते हैं अपने किसी प्यारे को डेडिकेट, सो उसके लिए भी सिंपली आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफिल करेंगे और वो गाना शो में शामिल करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा मेरे लिसनर्स के साथ एक ऐसा कनेक्शन हो जिसमें कुछ आपकी सुनी जाए और कुछ आपको अपनी सुनाई जाए। इसके
इसके साथ साथ आप सभी को बताते चलती हूँ कि radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप इस वेबसाइट के थ्रू अपडेट रह सकते हैं, आपको डेली अपडेट्स मिल सकती हैं और आप ये भी जान सकते हैं कि आपका फेवरेट आरजे कौन से दिन किस टाइम पे किस शो में आ रहा है, ताकि आप अपने तमाम तर फेवरेट आरजेस को सुन सके और अपने खूबसूरत से दिन को मजीद खूबसूरत बना सके। इसके साथ साथ आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अगर तो आप एप्पल यूजर हैं, सिंपली अपने फोन में जाएं, फोन में जाके एप्पल स्टोर पर जाएं, वहां सर्च करें रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। और अगर तो आप हैं एंड्रॉयड यूजर, तभी आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, वहां जाके आपको सर्च करना होगा रेडियो फजा 97.1 FM और सेम एज इट इज एक पर्पल कलर का आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बंधे रहें और आप हमें मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। ना सिर्फ बल्कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें और आप इसी तरह से अपनी जिंदगी को मजीद खूबसूरत खुशगवार बनाते रहें। अब से आप बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो ड्राइव कर रहे हैं या फिर अभी घर से बाहर निकलने लगे हैं या सोच रहे हैं कि चलो अब काफी रेस्ट कर ली, संडे का दिन गुजार लिया, अब जरा आगे बढ़ें अपने काम की जानिब। अच्छा, तो वो सभी लिसनर्स जो ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में हैं या फिर पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो आप भी चाहते होंगे कि आपका सफर खूबसूरत बन जाए, सो उसके लिए आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि बी केयरफुल, क्योंकि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो सो कोशिश किया करें कि आपका पूरा फोकस हो आपकी ड्राइविंग पे, क्योंकि लाइफ इज वेरी प्रिकॉशियस और जिंदगी बहुत अनमोल होती है और जिंदगी बार बार नहीं मिलती। सो कोशिश करिए कि आप ड्राइविंग करते वक्त अपना सारा फोकस रखें ड्राइविंग पे, इधर उधर आगे पीछे की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दें, क्योंकि ये आपके फोकस को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकती हैं।

सीधा लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अभी तक आपने अपने दिन का आगाज कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने दिन का आगाज नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का, इस खूबसूरत से मंडे का आगाज, क्योंकि स्टार्ट होने जा रहा है आज से एक न्यू वीक। और हमेशा कहा जाता है कि एक न्यू वीक के स्टार्ट पर इंसान के माइंड में बहुत सारे गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं और बहुत सी प्लानिंग होती है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर मंडे से उनके अंदर एक नई मोटिवेशनल इंस्पिरेशन आ जाती है कि नहीं, आज से मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करूंगी, ना सिर्फ यूटिलाइज करूंगी बल्कि कोशिश करूंगी कि इस पूरे वीक को प्रोडक्टिव बनाऊं। सो आज भी हमारे भी कुछ इसी तरह के गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं। होप सो लिसनर्स, आप सभी के भी इसी तरह के कुछ गोल्स होंगे, सो आप हमसे शेयर कर सकते हैं सिंपली हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 0115710971। सो डियर लिसनर्स, शो को आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा, गुफ्तगू तो जारी रहेगी लेकिन शो के स्टार्ट में मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छे खूबसूरत दिन का स्टार्ट होता है एक अच्छे मील के साथ। सो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट की, एंड देन ब्रेकफास्ट के बाद आपको ज़रूरत है अपने माइंड को, अपने सोल को थोड़ा सा रिफ्रेश करने की। सो डियर लिसनर्स, शामिल करती हूँ शो में एक ऐसा ही एनर्जेटिक ट्रैक जो कि आपके मूड को इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देगा और बिल्कुल बल्कि बहुत अच्छा कर देगा। सो जी आइए आप और मैं मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक से उस पर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM को इसी तरह से सुनते रहिए।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को जरूर एंजॉय किया होगा। अगर आपके भी हैं ऐसे ही कुछ पसंदीदा से ट्रैक्स, तो आप चाहते हैं कि हम उन्हें शो में शामिल करें, सो सिंपली आप हमें बता सकते हैं। हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर 0115710971, इस नंबर के थ्रू से आप हमें शेयर कर सकते हैं कोई भी ऐसा गाना जो आप सुनना चाहते हो या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हो, सिंपली आप हमें इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं। सो लिसनर्स, दिन का स्टार्ट करने के लिए हमने सुन लिया एक खूबसूरत सा एनर्जेटिक सा ट्रैक। अब से बारी आती है प्रॉपरली शो को स्टार्ट करने की, आगे बढ़ाने की। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम हर दिन का स्टार्ट करते हैं एक न्यू पॉजिटिव और मोटिवेशनल बात से, ताकि हमारा बाकी का पूरा दिन अच्छा गुजरे, ना सिर्फ अच्छा गुजरे बल्कि एनर्जेटिक हो। साथ ही साथ जितने भी नेगेटिविटी है, समटाइम्स हो जाता है ना कि इंसान के माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं या फिर इंसान थोड़ा सा ना

उम्मीद हो जाता है। सो, इस पॉजिटिव मोटिवेशनल बात को सुनने से वो तमाम तर नाउम्मीदी हमारे दिल से कुछ टाइम के लिए साइड पे हो जाती है। सो, आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैं एक ऐसी ही खूबसूरत सी बात। उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर अच्छे पॉजिटिव असरात मरतब करेगी।

तो ऐसा है, सच आते आते जब मैं यहाँ स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में मेरी मुलाकात हुई किसी एक इंसान से, जो कि मेरे एक तरह से अगर देखा जाए तो टीचर भी हैं, ना सिर्फ टीचर हैं बल्कि मेंटोर हैं। सो उनके साथ आते आते मेरी थोड़ी मतलब बातचीत स्टार्ट हो गई रास्ते में। सो 2 से 3 मिनट बात करने के बाद उन्होंने मुझसे आज एक बात कही जो कि बहुत सिंपल सी थी, बहुत बेसिक सी थी। अगर हो सकता है कि आप सभी भी उस बात को सुने तो आप सभी भी कहें कि ये तो बहुत सिंपल सी है, बेसिक सी है, इसमें ऐसा कुछ खास क्या है। बट ट्रस्ट मी, जब मैं आपसे वो बात शेयर करूँगी, सो बात जितनी सिंपल है उसका मीनिंग उतना ही ज़्यादा डीप, उतना ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो चलिए लिसनर्स, आपसे आज का मोटिवेशनल कोट शेयर करती हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा अभी शो में वक्त हो गया है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो ब्रेक पर जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन ब्रेक पर जाना हमारी मजबूरी है, सो जाना पड़ेगा। सो दे लिसनर्स, चलते हैं, बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब और आपसे मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए आई एम योर होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. You are Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM.
14: Turn it up, radio.

तो लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूं आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम पे। चलिए तो लिसनर्स, जैसा कि मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि आपसे आज का कोट शेयर करना है जो कि कमर्शियल ब्रेक के आने के सबब नहीं शेयर कर सकी, सो हम वापस से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो कुछ यूं है कि जब मैं आ रही थी तो मेरे सर ने मुझसे एक बात कही जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। ऐसा सुनने में बहुत सिंपल सी लग रही थी लेकिन जब मैंने डीपली उसको समझने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस बात के अंदर काफ़ी एक बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने सभी लिसनर्स के साथ भी शेयर किया जाए। हो सकता है कि इस बात की वजह से आप में से किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी में कोई भी पॉजिटिव असरात मरतब हो जाएं जो उसने पहले कभी सोचा ना हो और ज़िंदगी एक नए रुख से एक अच्छे कदम से आगे बढ़े। सो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ज़िंदगी में ऐसा हो कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दूसरे लोग हर्ट हो रहे हैं या उनको बुरा लग रहा है, सो आप हमेशा कोशिश करें कि आप कभी भी वो चीज़ उन लोगों के सामने रिपीट ना करें। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे दूसरों का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, अगरचे वो उनको अच्छी नहीं लग रही बट स्टिल उनका उसमें फ़ायदा है, सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वो बात बार बार रिपीट करें। अब आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर कोई बात किसी को बुरी लग रही है सो हमें तो उसको नहीं रिपीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर उसमें दूसरे इंसान का फ़ायदा छुपा हुआ है तो हमें उसको रिपीट कर लेना चाहिए। सो बेसिकली आज के हमारे इस कोट का मेन मोटिव, मेन मीनिंग कुछ यूँ है कि हम बाज़ुकात इस दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम डेली बेसिस पर हम जो भी काम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारा अपना फ़ायदा छुपा होता है। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं कि जो कोई काम करे और उसमें खुद का फ़ायदा ना हो। भले ही हम दूसरों को कहें कि हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं लेकिन हम सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें हमें फ़ायदा दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन कभी कभार हमें लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ज़िंदगी के उन पहलुओं को देखना चाहिए जो कि हम नॉर्मली डेली बेसिस पर नहीं देखते। और हमेशा हर काम अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि कुछ काम ऐसे भी कर लेने चाहिए जिस पे दूसरों की भलाई हो, हिदमत हल्क हो और इंसानियत की मदद हो। अगरचे अब वो बात आप कर रहे हो दूसरे इंसान को अच्छी नहीं लग रही लेकिन आपको पता है कि इसमें उसका फ़ायदा है और ये फ्यूचर में जाकर उसे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, सो आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए। सो डियर लिसनर्स, थोड़ा सा मुश्किल मीनिंग ज़रूर है लेकिन अगर आप भी आराम से सुकून से बैठ के चाय का मग हाथ में पकड़कर आराम से उसे पीते पीते इसको सोचेंगे तो आपको भी इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आज सभी के लिए ये भी एक लेसन है कि कोशिश क्या करें कि ज़िंदगी में हम तो बहुत सारे काम करते हैं जिसमें अपना फ़ायदा अपना मफाद देखते हैं, कोई एक आधा काम ऐसा भी कर लिया करें जो कि हिदमत हल्क के लिए हो, इंसानियत के लिए हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो आपके लिए ईसाले सवाब बनेगा। इससे ये होगा कि वो आपके लिए एक नेकी का रास्ता बन जाएगा और ज़िंदगी में जब तक आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक आपको उस चीज़ से फ़ायदा होता रहेगा। अगरचे वो आपको फिज़िकल फ़ायदा नहीं लेकिन स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। सो डियर लिसनर्स, वेल उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खूबसूरत सा कोट अच्छा लगा होगा। इस हवाले से आपका क्या कहना है 01157100971 आप इस नंबर के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपने विचार। सो डियर लिसनर्स, काफ़ी हो गई सीरियस गपशप, अब जरा सुनते हैं एक खूबसूरत सा एनर्जेटिक सा ट्रैक। सॉरी, आप भी मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ट्रैक शो में शामिल किया जाए लेकिन फिलहाल मैं अपनी मर्जी का एक ट्रैक शामिल कर देती हूँ। तब तक के लिए हम ये सुनते हैं।

सो ये तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? बेसिकली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, तो इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस ट्रैक को प्ले करती हूँ, क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं. क्या आप सभी के साथ भी कभी ऐसा होता है कि सडनली आप कोई गाना सुनें या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे अचानक से सुनने के बाद आपका माइंड क्लिक करता है और आप फ्लैशबैक में चले जाते हो और फिर आपको वो टाइम पीरियड याद आ जाता है कि जिस टाइम पीरियड में आप वो सॉन्ग सुना करते थे या फिर वो चीज़ें यूज़ किया करते थे? अच्छा, वैसे मोस्टली इस तरह तभी होता है जब आप कोई गाना सुनो, और या फिर आई थिंक सो फ्रेग्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें एक अहम रोल प्ले करती है. अच्छा, मैं जब भी कोई गाना सुनती हूँ तो मैं गाना सुनते सुनते सुनते उस टाइम पीरियड में चली जाती हूँ कि जहाँ मैंने ये गाना फर्स्ट टाइम सुना था. अच्छा, फिर मैं सोचती हूँ कि उस दौर के क्या सरकमस्टांसेस थे, उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ, ज़िंदगी कितनी चेंज हो चुकी है, लाइफ कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थाट्स. तो क्या आपके भी माइंड में इस किस्म की थाट्स आती हैं? 01157100971 है हमारा नंबर. सो आप इस नंबर के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं और भी इस तरह के अपने ख्यालात मुझसे शेयर किया करें, ताकि इसी तरह गपशप का सिलसिला जारी रहे और कुछ आपको अपनी बातें सुनाई जाएं और साथ ही साथ कुछ आपकी बातें सुनी जाएं. सो डियर लिसनर्स, इसी खूबसूरत सी बात के साथ साथ अभी हमारे शो यानी कि द टीवर डायलॉग में वक्त हुआ है आपके, मेरे, हम सभी के फेवरेट सेगमेंट यानी कि द स्पाइस किचन का, जिसमें हम बात करते हैं रोजाना डेली बेसिस पर मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज, यानी कि ऐसी रेसिपीज जो कि होती तो बहुत सिंपल सी हैं, बेसिक सी हैं, लेकिन हम उन रेसिपीज़ को बनाते हैं अपने डिफरेंट स्टाइल में, ज़रा से डिफरेंट फ्यूजन में, जिसमें हम क्या करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरह के फ्यूजन्स को मिक्स कर देते हैं, जिससे ये होता है कि आपको एक अच्छा बैलेंस और टेस्ट मिलता है, साथ ही साथ आपके घर वालों को खाने को कुछ न्यू. सो हमेशा की तरह आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैं ऐसी ही रेसिपीज. सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की मेन कोर्स आप सभी से शेयर करती हूँ. सो आज का हमारा मेन कोर्स है चिकन मुगलाई. इस रेसिपी को काफ़ी टाइम पहले मिडिल ईस्ट से स्टार्ट किया गया था. सो बेसिकली मुगलिया दौर में इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा खाया जाता था, बट स्टिल टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, सो हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं. इसी तरह से हमने इस रेसिपी का इनटेक भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया. सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने रूट्स की जानिब बढ़ते हैं और ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो कि हमें हमारे रूट से, हमारे ट्रेडिशन से जुड़े. सो बेसिकली ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे ना सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन, बल्कि हर तरह की एशियन कम्युनिटी जरूर फैसिनेट करेगी. सो लिसनर, जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए. अगर तो है आपके पास डायरी, सो वेल एंड गुड. अगर नहीं है, सो कोई भी आप नॉर्मल नोटबुक ले सकते हैं और एक अच्छा सा पेन भी, ताकि मैं जब आपसे इंग्रेडिएंट शेयर करूं तो आप उनको फौरन फौरन से नोट कर लें और आपसे कुछ भी मिस ना हो.

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है,
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

टू द लिसनर्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं हूं आप सभी की होस्ट सैनब फातिमा और आप सभी को वेलकम करती हूं आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑन एयर होता है रेडियो फजा 97.1 FM में। चलो लिसनर, जैसा कि देखते ही देखते वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला और अब आपको और मुझे साथ में हो चुके हैं एक घंटा कंप्लीट। देखा, ऐसा ही होता है जब आप किसी के साथ बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, आप उसके साथ इमोशनली बाउंड होते हो। सो आपको बिल्कुल भी वक्त का अंदाजा नहीं होता, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका माइंड इतना तेजी से चल रहा होता है और वक्त भी इतना तेजी से चल रहा होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि अभी तो हम मिले थे, लेकिन इसी इसना में 2 से 3 घंटे आपके आराम से गुजर जाते हैं। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने उन दोस्तों से मिलती हूँ जिनके साथ मुझे अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी फेक नहीं बनाना पड़ता, बिल्कुल रियल रहना पड़ता है। सो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम बातचीत करना शुरू करते हैं, बातें करते करते करते आराम से 2 से 3 घंटे गुजर जाते हैं। इवन कि समटाइम्स फोन कॉल्स पर भी इतना ही ज़्यादा टाइम हो जाता है और काफ़ी टाइम के बाद मुझे रियलाइज होता है कि ओह, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम के हम बात कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो, बहुत स्ट्रांग हो। सो डियर लिसनर्स, मैं चाहती हूँ कि कुछ इसी तरह से आपका और मेरा बॉन्ड भी हो ऐसे ही स्ट्रांग, ताकि आप जो भी कुछ सोच रहे हो, जो कुछ करने वाले हो या जो कुछ करने का इरादा रखते हो, वो सभी चीज़ें, वो सभी बातें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मुझ तक पहुंच जाएं, कुछ आपकी बातें सुनी जाएं और कुछ मैं आपको अपनी बातें सुनाऊं। सो डियर लिसनर्स, इसीलिए हमेशा से मैं कहती हूं कि 01157100971 है आपका और मेरा रابطे का नंबर, यानी इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने कीमती ख्यालात, अपने विचार और अपने आज के दिन के गोल्स। सो डियर लिसनर्स, अब तक तो आपने फाइनलाइज कर लिया होगा जो भी आपके माइंड में उलझने चल रही थी, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, वो सभी चीज़ें एक अब तक साइड पर हो चुकी होंगी। सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आप अभी थोड़ी देर तक क्या करने वाले हैं, या फिर आपने क्या डिसाइड किया है कि आज के हवाले से आपका क्या मोटिव होगा, क्या गोल्स होंगे। चलिए तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने रेसिपी प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, मैरिनेशन। मैरिनेशन इज द की ऑफ एवरी रेसिपी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका मीट टेंडर हो, जूसी हो, सो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन करें, अच्छे से मिक्सअप करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा देर के लिए चीज़ों को रखें। सो हमने क्या किया, हमने चिकन में शामिल किया जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ हमने इसमें नमक शामिल किया, हल्दी शामिल की और साथ साथ हमने इसे मैक्सिमम 20-30 मिनट्स के लिए रख दिया। इससे क्या होगा कि अच्छे से मसाले जज्ब हो जाएंगे और हमारा मीट बहुत अच्छी तरह से टेंडर और जूसी हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की जाने। सो इस स्टेप में हम ये करेंगे कि हम लेंगे एक अच्छा सा पैन, इसे हम आराम से गर्म कर लेंगे, उसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, जिसे हम 2 से 3 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। अच्छा, जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा, सो अब बारी आती है इसमें शामिल करेंगे गर्म मसाले। अब हम शामिल करेंगे इसमें गर्म मसाले, जो सभी मैंने आपसे इंग्रेडिएंट्स में शेयर किए थे, हम इसमें शामिल करेंगे एक तेज़पत्ता, एक हरी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा। 2 से 3 मिनट में हमारा जो गरम मसाला है वो अच्छे से सौटे हो जाएगा और अब बारी आती है कि हम इसमें शामिल करें अपना प्याज का पेस्ट। सो हम प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक हमारे प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। याद रखिएगा कि आपने प्याज को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं ओवर कुक करना। क्यों? क्योंकि इससे ये होता है कि जो हमारी रेसिपी होती है उसका कलर नेचुरली डार्क हो जाता है, जो कि ऐसा दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और फिर खाने में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम हमेशा वही चीज़ें खाते हैं जो हमें दिखने में खूबसूरत दिखती हैं, प्रेजेंटेबल दिखती हैं।

सो जैसे ही हमारा प्याज हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, सो अब बारी आती है हमारे मेन इंग्रेडिएंट को शामिल करने की, जो कि है मैरिनेटेड चिकन. सो अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेटेड चिकन और साथ ही साथ हम चूल्हे की आंच को कर देंगे तेज. 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम चिकन को भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि हमारे चिकन का रंग हल्का सा तब्दील हो जाए. अच्छा, जैसे आपको लगे कि अब आपका चिकन काफ़ी हद तक अपना कलर चेंज कर चुका है और अब जो पिंकिश सा टोन है वो काफ़ी हद तक ब्राउन टोन में शिफ्ट हो रहा है, सो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाला जात जो मैंने आप सभी से इंग्रेडिएंट्स में शेयर किए थे, यानी कि हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, जो कि हसबे ज़रूरत हसबे जायका है. लेकिन मैं यहाँ इस रेसिपी में शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक. बाद में मैं चेक कर लूँगी कि अगर इन केस मुझे लगा कि नमक थोड़ा सा कम है सो क्वांटिटी बढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे खानों में नमक तेज़ पसंद है. लेकिन अगर आपको खाने में कम नमक पसंद है या आपको आदत है कि आप कम नमक में खाना खाते हैं, सो आई थिंक सो आपके लिए 1 टेबल स्पून इट्स इनफ. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि आंच को थोड़ा सा स्लो करेंगे और अपने पैन को ऊपर से ढक देंगे, ठीक है, ताकि हमारा चिकन जो नहीं है वो अच्छे से पक जाए, अच्छे से कुक हो जाए और जो भी हमारा मीट है वो बिल्कुल टेंडर हो जाए. सो अब हम 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे. 10 मिनट के फौरन बाद हम इसमें शामिल करेंगे काजू बादाम का रिच पेस्ट, जो कि अच्छी तरह से हमारी रेसिपी के अंदर मुगलाई टेस्ट को लेकर आएगा. सो इसे शामिल करेंगे. अच्छा, ये आपको कहीं भी किसी भी सुपर स्टोर से जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा, सो इसकी फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पेस्ट बनाना सिखाऊं, सो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं सिंपली 01157100971 आपका और मेरा रबते का नंबर है, सो आप इसके थ्रू मुझे बता सकते हैं. सो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन ये इजीली सुपर स्टोर से सुपरमार्केट से आराम से मिल जाता है. सो आपने इसको शामिल कर देना है. शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे. जब हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और लगेगा कि अब ग्रेवी और तेल थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो रहा है, सो हम इस मोमेंट में इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी, जो कि चिकन को पूरी तरह से गलने में मदद देगा. अब बारी आती है हमारे सबसे लास्ट सबसे फाइनल स्टेप की, यानी कि इस स्टेप में हम शामिल करेंगे बाकी का तमाम तर बचा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, साथ ही साथ फ्रेश क्रीम, और इसे मजीद 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे और आपका मज़ेदार सा चिकन मुगलाई हो गया तैयार. सो टोटली अगर आप एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाएं, सो 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये आपकी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई, जिसे आप आराम से कहीं भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर आपको जो भी प्रेफर करें. सो लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को. आई होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी. इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सिंपली अरोमास ईच एंड एवरीथिंग. और अगर इसके हवाले से आपके मज़ीद कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरी हो, सो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं. ये था हमारा आज का मेन कोर्स द स्पाइस किचन का. अब ज़रा बारी आ गई है शो में एक अदद म्यूज़िकल ट्रैक को शामिल करने की, ताकि तभी लिसनर्स कहीं बोर ना हो जाएं. तो जी आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और फिर आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब.

चलिए तो लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जो अपने आप में ही एक पूरी त्यौहार की तरह है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल डिश है, लेकिन ये डिश जो है वो बेसिकली एक मखसूस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। सो उनके लिए, उनके मायने में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, लेकिन आई एम श्योर आप सभी ने भी कहीं ना कहीं ज़रूर ट्राई की होगी, और अगर तो आप सबने नहीं ट्राई की सो आज ही का दिन है, आज ही का मोमेंट है, सो आज ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा ताकि आपके आपको कुछ नया टेस्ट करने को मिले। और वैसे भी होता है ना कि हम एक ही तरह की एक जैसी चीज़ें खा खा कर बोर हो जाते हैं, सो लाइफ में चेंज ज़रूरी होता है ज़िंदगी के हर मोमेंट पे, वरना स्पीड स्लो हो जाती है और प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। तो आज की हमारी स्पाइस किचन की सेकंड रेसिपी है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं और ये टोटली नेचुरल होती है और बेसिकली अपनी ही यखनी में बनती है। सो इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आज हम बनाएंगे काबली पुलाव। सो जल्दी से आप सभी से इंग्रेडिएंट शेयर कर देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एज़ यूजुअल चावल, क्योंकि पुलाव चावल के साथ ही बनता है। सो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बासमती चावल 2 कप, जिन्हें हम अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटा पानी में भिगो के रख देंगे। इससे ये होगा कि चावल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, गलने में ज्यादा वक्त दरकार नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे खिले खिले पकेंगे। अच्छा, सेकेंडली हमें चाहिए इसमें मीट, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मटन का या फिर बीफ का, इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन काबली पुलाव हमेशा बीफ और मटन में बनता है। सो अगर आप सोच भी रहे हैं कि चिकन को यूज़ किया जाए

साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश, 3 अदद आप 3 चम्मच ले सकते हैं, या फिर क्वांटिटी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। अब बारी आती है हमारे अगले इंग्रेडिएंट की। सो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हम 2 अदद यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे शुगर यानी कि चीनी, 2 टेबलस्पून साबित गरम मसाला जिसमें हम 1 बड़ा चम्मच यूज़ करेंगे, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, उसके बाद बड़ी इलायची, और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है कुकिंग ऑयल। अच्छा, मोस्टली लोग कहते हैं कि जब हम कोई सालन बनाते हैं जैसे कि कढ़ाई हो गई या नॉर्मली सिंपल कोई सा भी सालन, सो उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप या तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें या फिर बासमती घी, लेकिन मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ कि आप जब भी चावल बनाओ या फिर पुलाव बनाओ या बिरयानी, वहाँ आप कोशिश क्या करेंगे आप कुकिंग ऑयल को यूज़ करें, बासमती घी को नहीं, क्योंकि घी से क्या होता है कि आपके चावल जो हैं अच्छे बन जाते हैं लेकिन वो फ़ौरन से जैसे ही आपके चावल थोड़े से ठंडे होते हैं सो जो घी होता है वो जम जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के खाना खा कर गला ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कोशिश किया करें कि आप पुलाव हमेशा कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में बनाएं। अगर आप ऑलिव ऑयल की साइड पर जाते हैं सो ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुकिंग ऑयल तो आप सभी को मालूम है कि हम सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। सो हम इस रेसिपी को यानी कि मैं इस रेसिपी को कुकिंग ऑयल में ही बनाना प्रेफर करूँगी। सो लिसनर्स, ये तो थे हमारे इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा से प्रोसीजर की जानिब। ज़रा सा नहीं, काफ़ी डिटेलिंग प्रोसीजर है, लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि ज़रा सा, क्योंकि वो मेरे मुँह से निकल गया।

और अच्छी तरह से इसे मिक्सअप करेंगे ताकि चीनी अच्छे से कैरमलाइज हो जाए और बिल्कुल इसे अलग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर थ्री की। अब इस स्टेप में हम एक मेन पॉट में बचा हुआ कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब जो हमारा प्याज बच चुका था जिसे हमने मीट के साथ ऐड नहीं किया था उस प्याज को डार्क ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही वो डार्क ब्राउन हो जाएगा इसमें उबला हुआ गोश्त शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के लिए आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि आपका जो मीट है वो पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छे से गल चुका है, काफ़ी ज़्यादा टेंडर है। तो अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए भूनेंगे या फिर तेज़ हाथ से चम्मच चलाएंगे सो हो सकता है कि आपके तमाम तर जो चिकन सॉरी मीट के पीसेस हैं वो रेशे रेशे हो जाएं। सो हमने इनको रेशे रेशे नहीं करना। हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि रेसिपी खाने में तो डिलीशियस हो लेकिन देखने में भी डिलीशियस हो। सो ज़रा हल्का आराम से प्यार से हल्का हाथ रखें। चलो लिसनर्स, 3 स्टेप्स आप सभी के साथ मैंने शेयर किए, अभी बाकी के स्टेप्स बाकी हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और स्टे ट्यून विद अस।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा. आप सभी को खुशामदीद करती हूँ द टीवर डायलॉग जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM में. तो लिसनर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब हमारा शो अपने इख्तिताम के थोड़ा थोड़ा करीब पहुँच चुका है, सो जल्दी से आप सभी के साथ रेसिपी को शेयर करती हूँ जो हमने ब्रेक से पहले कंटिन्यू की हुई थी. 3 स्टेप्स तो शेयर कर दिए थे, अब बाकी रह गए हैं 2 स्टेप्स. सो जल्दी से शेयर करती हूँ ताकि आप उनको नोट कर लें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी.

0: जी लिसनर्स, अभी इस वक्त हमारे एक लिसनर की रिक्वेस्ट है, सो उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक कि उनका फेवरेट सॉन्ग शो में शामिल किया जाए, सो हम अपने सभी लिसनर्स की रिक्वेस्ट को ज़रूर सुनते हैं और ज़रूर फुलफिल करते हैं। सो जी, आप सभी की भरपूर फरमाइश पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ये खूबसूरत ट्रैक इंजॉय करिए।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

सेहत लिसनर्स, हमने पूरी कोशिश की कि हम आपकी तमाम रिक्वेस्ट को फुलफिल करें और आपके फेवरेट ट्रैक्स को शो में शामिल करें। अब जरा हम अपनी रेसिपी को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। सो अब हम आगे बढ़ चुके हैं स्टेप नंबर 4 पे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा बचा हुआ गोश्त का स्टॉक होगा इसे हम डाल देंगे। जब पानी उबलने लगेगा तो भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, जब चावल का पानी 80% तक बिल्कुल ड्राई हो जाए और आपको ऐसे लगे कि ऊपर से आपको फ्राई, गाजर, किशमिश की तमाम तरह लेयर्स दिखने लगी हैं, सो अब मोमेंट आ चुका है कि अब आप इसे यानी अब मोमेंट आ चुका है कि अब आप इसे दम पर लगा दें। सो सिंपली हम बर्तन को अच्छी तरह से फॉयल या कपड़े से ढक कर इसे दम पर धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट्स के लिए लगा देंगे। सो इसी तरह से हमारा मज़ेदार सा अफगानी काबली पुलाव हो जाएगा तैयार। देखा आप सभी ने, हमने इसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस यूज़ नहीं किए, हमने बिल्कुल इसे इसके मेन मसालों में ही कुक किया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंडर और डिलिशियस बना। ये तो थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज। होप सो लिसनर्स आप सभी को अच्छी लगी होगी। सो मैं सभी से यही कहूँगी कि जितने भी फीमेल्स हमें सुन रही हैं आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा, और जितने भी हमारे मेल लिसनर्स हैं आप सब भी ट्राई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कुकिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। आजकल जैसे कि इट्स 2026, तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को हर एक चीज़ आनी चाहिए, तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी कुकिंग आनी चाहिए। उन्हें भी इस चीज़ का हुनर होना चाहिए कि किस तरह से हम अच्छा प्यारा डिलीशियस खाना बना सकते हैं, क्योंकि आपका काम सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं बल्कि कभी कभी किचन में भी कदम रख लेना चाहिए। सो जी लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी स्पाइसी रेसिपीज। अब मैं ज़रा सोच रही हूँ कि जहाँ थोड़ी चटपटी तो हमने बातें कर ली हैं, अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि बिल्कुल रिफ्रेश हो, डिलिशियस हो और थोड़ी सी स्वीट टैंगी हो। क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा चटपटी या मिर्चों वाला खाना खाते हैं इंस्टेंटली दिल करता है कि अच्छा आप कुछ मीठा हो जाए। सो उस मीठे की क्रेविंग को दूर करेंगे आज हम अपनी इस रेसिपी से। लेकिन इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात खासियत ये है कि ये टोटली ऑर्गेनिक है, यानी कि हेल्थ भी डैमेज नहीं होगी, साथ ही साथ अच्छा टेस्ट भी मिलेगा। सो जो आप सभी से शेयर करती हूँ, सो हमारी आज की जो मीठी डिलाइट रेसिपी है जी, तो आज हम बनाएंगे शाही फ्रूट डिलाइट। इसे हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आजकल जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मौसम काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। सो इस तरह जब अचानक से मौसम चेंज हो तो हमें चाहिए कि हम फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर दें। अच्छा, अब हमारे घर में मोस्टली छोटे बच्चे होते हैं जो कि फ्रूट्स को बिल्कुल भी नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो अगर आप उन्हें इस तरह की मज़ेदार सी डिफरेंट फ्यूजनल रेसिपीज़ बना कर देंगे तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे, और ना सिर्फ ट्राई करेंगे बल्कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। सो जी, शाही फ्रूट डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं आप सभी से शेयर करती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए मिक्स फ्रूट्स, कटे हुए, आप कोई से भी सीजनल फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो या आपके घर पर हो। अच्छा, मैं इस रेसिपी में शामिल करने जा रही हूँ मैंगो, बनानास, इसके साथ साथ ग्रेप्स और अनार, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी कलरफुल से हैं और टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा यमी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनकी जगह अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है फ्रेश क्रीम 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 4 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 1.5 टेबल स्पून, और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे काजू और बादाम या कोई से भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो, जो आप प्रेफर करते हो, आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसे मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसमें जेली शामिल कर सकते हैं। जेली के साथ साथ आप इसमें थोड़ी सी आइसक्रीम भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें बादाम, पिस्ता, इसके साथ साथ थोड़े से आप चोको चिप्स भी शामिल कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें शामिल करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा यमी बनेगा।
لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سبھی چیزیں شامل کریں, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے جو ایزیلی مل رہی ہیں وہی شامل کر لیں. سو جی لسنرز, یہ تو تھے انگریڈینٹس. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پروسیجر کی جانب.

अच्छा जी, इसके प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम ठंडी फ्रेश क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, साथ ही साथ हम अच्छे से क्या नाम है, जो हमने आइसक्रीम ली थी उसे शामिल कर देंगे, चोको चिप्स को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसे एक थिक सा बैटर बना लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे सिंपली चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज़ करूँगी बीटर, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थिक कंसिस्टेंसी मुझे मिलेगी। सेकेंड में हम क्या करेंगे, इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे और फिर इससे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे।

बारी आती है इस बैटर के अंदर, यानी कि इस क्रीम के अंदर हम शामिल करेंगे अपने पसंदीदा फ्रूट्स। सो जो भी आपको पसंद हो, जो आपके फेवरेट हो, या जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हो, आप वो सभी फ्रूट्स इसमें शामिल कर दें, अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। फिर बारी आती है ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने की, इन्हें भी अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए अब आप फ्रीजर में रख दें और इसे बिल्कुल ठंडा करके आप खाएं। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम जो स्वीट डिशेस होती हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाते हैं, सो उसके पीछे की लॉजिक क्या है? सो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा चटपटा स्पाइसी और गर्म फूड खा लेते हैं, सो उसके बाद हमें ज़रूरत होती है थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा ठंडा। सो इसीलिए हम तमाम तरह डेजर्ट्स को अच्छे से ठंडा करके खाते हैं, क्योंकि एक फ्रेश वाइब आती है। सो आपने इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है, ठीक है? ठंडा करने के बाद आपने इसे अच्छे से गार्निश करके, डेकोरेट करके खाने के बाद सर्व करना है। एंड आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसको सर्व करेंगे तो आपके घर वालों को, स्पेशली आपके लव्ड वंस को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी द स्पाइस किचन की डिलिशियस रेसिपीज़। आई होप सो आप सभी को ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी तब भी मुझे अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा 0115710091 है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी इस हवाले से कोई भी क्यूरीज हैं, या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, या आपसे कोई इंग्रेडिएंट मिस हो चुका है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार दोबारा से भी रिपीट कर दूँ ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। लेकिन अगर फिर भी कुछ मिस हो चुका है, या आप चाहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपीज जिसके ऊपर मैं बात करूँ या जिसे मैं शो में शामिल करूँ, इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जिससे आप चाहते हो कि मैं उसे भी शो में शामिल करूँ, सो सिंपली आप मुझे बता सकते हो। बताना किस तरह से है? हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, क्योंकि यही है मेरा और आपका रबते का नंबर। सो लिसनर्स, इस खूबसूरत सी बात के साथ साथ हमारे शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सो ऑल माय लवली डिवास, इट्स टाइम टू वाइंड अप। उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ शो अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो कोशिश करें कि आप अपने इस दिन को खूबसूरत बनाएं, मेमोरेबल बनाएं, यादगार बनाएं, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और अगर किसी के साथ आपकी कोई तल्ख कलामी हो गई है, सो उसे माइंड से निकाल दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आप अपना सारा टाइम इन्हीं सब में वेस्ट कर देंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं निकल सकेंगे। चलो लिसनर्स, इस खूबसूरत सी बात के साथ शो को अलविदा कहती हूँ। आप सभी भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मुझे अपनी आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज। अच्छा, जाते जाते ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक सुनते हुए जाएं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM.
9: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing.
11: Faza 97.1.

दिल तो पागल है जी। इसको समझना ना।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: से कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ समीरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: tú y tú. Pilla de cuna de tiría de llorina, mi hija, vamos a besar de tú y tú. Sabá no me nara que noche pa' que noche tú y tú pegar en mería con...
1: ¿Tería, Zara? Ye, commercial to sunli.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
9: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: जबरदस्त हिट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

याद रखें, हर वो तकलीफ जो इजहार की इजाज़त ना पाए, वक्त के साथ दर्द नहीं रहती, वो शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। फिर लोग इंसान की खामोशी को मिजाज समझ लेते हैं, हालांकि वह अनकहे दुखों का कब्रिस्तान होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि लोगों के दिलों को कब्रिस्तान ना बनने दें। एक और अहम बात, हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों के साथ जोड़ देते हैं। अगर फलां शख्स तारीफ करे तो खुश होंगे, अगर फलां चीज़ मिल जाए तो सुकून मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि असल सुकून इंसान के अपने अंदर होता है। शुक्रगुजार इंसान हमेशा खुश रहता है जिसने हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लिया, उसने आधी परेशानियाँ ख़त्म कर दी। आज का खूबसूरत कौल है कि कामयाब इंसान मौके के इंतज़ार नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत से मौके पैदा करता है। क्या आप जानते हैं, तहकीक बताती है कि अगर इंसान रोज़ाना सिर्फ 20 से 30 मिनट 30 कदमों से चले तो दिल मजबूत रहता है, जहनी दबाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, मोटापे में कमी आती है, जिस ज़्यादा चाको चौबंद रहता है। लिहाजा अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में सेहत के लिए ज़रूर वक्त निकालिए।

लोगों के रवैयों का जहर चखकर वहीं पर थूक दें, वरना यह जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना सकता है। लोगों की बातों की परवाह न कीजिए। अजीज सामीन, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे शिकायतों में नहीं बल्कि शुक्र गुजारी, मेहनत, मोहब्बत, खिदमत और अच्छे अखलाक के साथ गुजारें। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी इबादत है, किसी की मदद करना भी इबादत है, अच्छे अल्फाज बोलना भी इबादत है। आइए अहद करें कि आज से हम अपने वक्त की कदर करेंगे, अच्छी आदतें अपनाएंगे और अपने मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद इंसान बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, खुशी, आसानी और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनने अब एक म्यूजिक, म्यूजिक ब्रेक के पास आपका होस्ट, आपका मेजबान सैफा हैदर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। फिर वक्त इजाजत।

दोस्तों, कामयाब लोग और आम लोग दोनों के दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कामयाब लोग वक्त को अपने मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि बहुत से लोग वक्त को हालात के रहम व करम पे छोड़ देते हैं। अगर आप तालबिल्म हैं तो रोज़ाना सिर्फ एक घंटा इजाफी मेहनत आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो नई महारत सीखना आपके मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो रोज़ाना अपनी मनसूबा बंदी पर वक्त देना आपके कारोबार को नई बुलंदियों तक पहुँचा सकता है। अगर अब आप एक आम इंसान है तब भी वक्त की कदर आपकी ज़िंदगी में नज़्म, सुकून और कामयाबी ला सकती है।

रिश्ते तोड़ सकता है। सामीन अजीज, आजकल हम अक्सर अपनी ज़िंदगी का मुआवजा दूसरों से करते हैं। किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर, किसी के पास अच्छी मुलाजमत, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की आजमाइश अलग होती है। अगर अल्लाह ने हमें सेहत दिया, वालदैन की मोहब्बत दी है, रिज़्क दिया है, ईमान दिया है, तो ऐसी नेमतें हैं जिनकी कीमत दुनिया की कोई दौलत अदा नहीं कर सकती। इसलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से करें, हर रात अपने रब का शुक्र अदा करते हुए सोएं। शुक्र गुजार दिल में सुकून ज्यादा होता है, शिकायत करने वाले दिल में बेचैनी ज्यादा होती है। आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए कि माहिरीन के मुताबिक अगर इंसान रोजाना मुनासिब मकदार में पानी पीता रहे, मुनासिब नींद ले और कुछ वक्त पैदल चलने के लिए निकाले, तो उसकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी कारकर्दगी भी बेहतर हो सकती है। इसी तरह चंद मिनट खामोश बैठ कर अपने दिन का जायजा लेना भी जहनी दबाव को कम करने में मुआविन और मददगार साबित हो सकता है।

एक सवाल अपने आप से जरूर पूछे, क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं 5 साल पहले था? अगर जवाब हाँ है तो फिर हमें रुक कर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी का मतलब सिर्फ उम्र बढ़ाना नहीं बल्कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखना, खुद को बेहतर बनाना और अपने अंदर मुस्बित तब्दीलियां पैदा करना है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि ये है कि वो हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनता जाए।

याद रखिएगा कि इंसान हमेशा अपने खैरख्वाह को उसके चले जाने के बाद ही पहचानता है, इसलिए अपने खैरख्वाहों को पहचानने में ताखीर ना कीजिए। आपके खैरख्वाह आपके इर्गिर्द हो सकते हैं, उनकी कदर कीजिए कबल इसे के वो इस दुनिया से चल बसें।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर

0: लखनऊ रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station that plays
9: foot tapping music.
10: Faza 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
12: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रेसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
5: ओए खुशियाँ मनाओ पंगड़े पाओ पंगड़े पाओ पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
5: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
5: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
5: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: Ya phir English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड ऐप.
1: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल

0: करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: 97.1 FM।
1: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा।
2: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: push me away. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: जबरदस्त हिट्स,
8: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
9: फजा 97.1 FM,
10: आई लव इट।

0: शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
16: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: 97.1 FM.
1: हो गया ना कमाल।
2: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।
3: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आएं और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रेसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.